जसले पाथा नेपाल सम्बचिन्छ सब पी खुद दिल्ला थो पञ्चमी थो रेडियो नेपालका अन्य नादिसा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार सरकार वा मिटर ब्याज पीडित पक्ष अध्यक्ष गुगु धलया सहमति चुला गुदु सहमति जुकथ वङ्गु गुनु निसेन हेनासँग मिटर ब्याज विरुद्ध आन्दोलन दि गुदु वङ्गु असार 25 गते जनकपुर यात्री या गाछी सन्यागु न्यासी वना न्याय मार्च 12 निजगढ ठिङ्के ढुङ्कानी गृहमन्त्री सुदन गुरुङ वा पीडित प्रतिनिधि दोथी ये वार्ता पुच निसुनेको सहमति ल लागु ख सहमति कथम गहे ये वो पी पीडित पक्षीय वार्ता पुच वो प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय सचिव पुष्कर बासकोटा नेतृत्वीय सरकारी पुच दथी जु गुगु धल सहमति चु लागु ख सहमति स सरकारी वार्ता पुच यथा सं सचिव सापकोटा पीडित पक्ष यथा स अवधेश कुशवाहा लाचित आदि गुदु सहमति कथ सरकार मिटर ब्याज यथा आर्थिक अपराध कथ कागु थोपर्थ पूर्ण उन्मूलन जुगु घोषणा यता वैगु मन्त्री परिषद प्रस्ताव यङ्के गु अध्ययन फुक फर्जी तमसुक दृष्टिबन्धक छिनुवा पास व बाध्यकारी चेक त ध्वस्त स्वत अवैध व खारेज याइगु जुगुधु सहमति कथा गृह मन्त्रालय सोला दुने विशेष विधेयक मस्यौदा देका मिटर ब्याज नियन्त्रण नपाया एन देकिगु जुगुधु छ गुकी मुद्दा स्वयगु ब्याग्ला न्यायाधिकरण पीडित या सम्पत्ति लित बिगु व मा कथा या क्षतिपूर्ति ग्यारेन्टी याइगु जुगुधु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वदेशी उत्पादित लकाँ चपलिया निर्यात प्रबन्धने सरकारिया मागु कथया सहजीकरण यायागु पच पङ्का दिगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय मिग लकाँ उत्पादक संज्ञा प्रतिनिधि नापा सला यायागु झोले प्रधानमन्त्री शाह चपल लकाया आयात प्रतिस्थापन लजका बोलङ्कीगु नीति मागु ग्वाली ठेङ्केगु बच बिया दिगु ख वेक्ल सोङ्गु तहया सरकार समन्वय स चप्पल लका उत्पादन नापाया सिपमूलक तालिम याकेगु नेपाली लका चप्पलिया प्रबन्धन व बजारीकरण निजी लागायत प्रोत्साहन यायगु बचाउ बिहादिगु ख अध्ययन उद्योग उत्पादन क्षमता कथा कच्चा पदार्थ आयात सीमा ट्र्याकिङ व अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी देखेगु प्रधानमन्त्री जानकारी बिहादिगु ख संज्ञा पदाधिकारी व दुजपिसा सरकारसँग मागु नीतिगत ग्वाली बजार संरक्षण व उद्योग मैत्री व्यवस्था जुस स्वदेशी लका चप्पल उद्योग पूर्ण कथन ताके सञ्चालन जुई फैगु भलसा नाफा बियादिगुदु बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रालय लिया मोयाना च्यागु कायम यागुदु नुगु आर्थिक दन 2083-84 नापा मन्त्रालय लिया झिम्प्याङ्गु सम मोयाना च्यागु यागु ख वङ्गु वैशाख 22 गते चोङ्गु मन्त्री परिषद बैठक या कोचिना मेगानिसे कार्यान्वयन वोगु नुगु संरचना कथा अब निसे मुख्यमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय नापा प्रदेश च्यागु मन्त्रालय दैगु जुगुदु प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद सापकोटा नेपाल संविधान कथा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया या सिफारिस मन्त्री परिषदीय मिग ज्या भाला नापा थोको छिनायना दिगु ख मडिक वगु वाला खुसी बाचल या हुने डेन्याङ्का खुगु लम्पु टी गुडु खुसीबा चल डुबिना नापाया हुने बिपी राजमार्ग कर्थन लागु खुर्कोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी न्यायगुली डिना चोङ्गु सवारी झोल डिना चोङ्गु नेपाल प्रहरिया धापु दुसा अथियाना बर्खाया हुनी जुई फैगु खुसीबा चल या चलया हाठ्या महयागु आजु नापा मकवानपुरे दुगु कान्ति लोकपथ कथन यागु सवारी झोल चानेसिया इले दिका तयागु वेक्ल सूचना बिया दिगुदु केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफले इलाम जिल्ला लाइगु मेची राजमार्ग न दिना चोङ्गु जानकारी बिया दिगुदु छ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता काफले लुह नापाया चलया हुने अर्घाखाँची जिल्ला सालझण्डी धोरपाटन सडक फुक बन्द जुया चोङ्गु धया दिगुदु छ सिन्धुपाल्चोके अरणीको राजमार्ग चलया हुने डिना चोङ्गु नेपाल प्रहरी धापुदु अथेना मिग सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिका दुई कोदारी दुगु अरणीको राजमार्ग कथन लाइगु इकुवा चलाउले लपु टिगुडु बागलुङ्गा काली गण्डकी करिडोर न ल टिना चोङ्गु जानकारी होगुदु लिपाङ्गु सोला डेनियङ्क झिन्सोस पी नेगु विपत्या झाँका जुगुदु थो झाँका सछिव खुइसोमा मनुषिगु दुसा गुस व नेनीमा मनु घापा जुगुदु विपत्या हुने झिम्पेस
ने सोखा छेज खे लिचो लागु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण वा व्यवस्थापन प्राधिकरण दागुदु प्राधिकरण या कथ वङ्गु वैशाख एक गते निशे मिगत फुक्कासिबे उप सर्पया छाका जुगुदु सर्पया सर्पङ्याना सुई गुमा मनु सिगु दुसा मलकङ्कया निङ्यामा लोक लेकङ्कया निछमा मिम पुना व जनावर तेगु आक्रमण्य हुने झिन्नेमा झिन्नेमा धाकु फस याना झिन्सोमा चलख याना झिन्नेमा खुसीबाख याना झिमा व तचोगु वाया हुने पेमा मनुषी गुदु लिपाङ्गु निपे गौसन जक पी ङ्यागु विपत्या झाँका लाना सोमा मनुषी धुङ्कगु निङ्यामा मनु घापा जुगुदु विपत्या हुने झिन्नीगु लाख नि हेदो बराबर क्षति जुगु प्राधिकरण या थापुदु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलमा पूर्वी चितवन या राप्ते नगरपालिका बाह्र यौरा लिटारे दुगुश्री गणेश माध्यमिक विद्यालय मिग सोया डिगुदु चेपाङ समुदाय मचा मस्ते गु नीति आखबङ्का त गुथो आवासीय विद्यालय शैक्षिक अवस्था भौतिक पूर्वाधार व शिक्षण सिकाय अवस्था विषय सम्वेकलाई जानकारी कया दिगु ख मन्त्री पोखरेलमा शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी तेमा अभिभावक नापाया सहलाय झोले विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर विद्यार्थी तेगु विद्यालय पौँ चेपाङ समुदाय मचा मस्ते सम्फया चुने मागु शैक्षिक हाथ्या व विद्यालय याता मालिगु हलन्जोलाया विशेष जानकारी कया दिगु ख जानकारी लिपा मन्त्री पोखरेल दुर्गम व सीमान्त कृषि समुदाय मचा मस्ते गुनितिन गुणस्तरीय शिक्षा लल हाकिगु सरकार नापाङ्गु ज्याजुगु कना दिगु दुसा आतियाना बनेको थिए फयाचङ्गो हाठिया नङ्केटा मन्त्रालय समागु कुतयागु बचना पाफोका दिगुदु युवा तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव राष्ट्रिय युवा परिषद अध्यक्ष ज्याजो लिचलाईको कथा देखे त औजमा बिहा दिगुदु मन्त्री परिषद निकको बैठकै मन्त्री यादव परिषद अध्यक्ष ज्याजो द्वाथीका मोडालिटी विकास याना समाज लाखेको प्रभाव खने दैगु याना ज्याजो या त औपचारिक ताखे जक मतसे लिचो प्या उइक कथन देखे त बिहादिगु ख बैठक दक्षिया ज्याजो छेला बुलाया नीति नुगु मोडालिटी विकास यायगु ज्याजो न्याकिबले उकि वास्तविक प्रतिफल व प्रभाव लाइगु कथ ज्या यायगु कोछिगु त थ्या न्यो मन्त्रालय युवा ए न्या त संशोधन एकीकरण याय त देखगु विधेयक न मिग सल जुगु ख कर्णालिया सडक पूर्वाधार अवस्था अनुगमन व निरीक्षण यात्रा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल मेघ कालीकोट ठेङ्का दिगुदु सडक अवस्था विशेष मेघ सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत प्रमुख नापा कर्मचारी नापा सल व्याका दिसे मन्त्री लम्सा न कर्णाली राजमार्ग दैलेख दुसे कालीकोट ठेङ्का दिगु प्रतिनिधि सभा सांसद रमेश कुमार सापकोटान जानकारी बिहा दिगु ख वेक्ल मन्त्री लम्साल मेघ कालीकोटिया नगमा गमगढी सडक व थौँ खुलालु कोल्टी सिमकोट सडक जोसे बाजुराया कोल्टी झाइगु व सडक निरीक्षण याइगु ज्यादल दुगु जानकारी ब्यादिगुदु उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बजारले बलमदुगु नक्कली व म गुणस्तर जुगु चोरी पैठारी यागु फुटवेयर लकाँचा पल उत्पादक या भौतिक व डिजिटल प्लेटफर्म या माध्यममा मिया चोङ्गु ज्याखन डिकेटा इनापु यागुदु विभाग ठिठी माध्यममा थ या त उजुरी व ख वोगु क सेन्थो इनापु यागु ख उपभोक्ता संरक्षण एन 2075 या दफा 6 उत्पादक थप्न उत्पादन यागु वस्तुसँग एने तोके यागु कथया लेबल या मालिगु दफा 8 पैठारी कर्था वस्तु पैठारी याइबले कानुन कथा शर्त पोङ्के मागु व दफा 11 वस्तु मिगु विक्रेता या दायित्व नापाया कानुनी प्रावधान कथ उपभोक्ता गुणस्तरीय वस्तु सेवा काइगु अधिकार या त सुनिश्चित यागुदु मिग सूचना पिथसे विभाग स्वापुदुगु फुक्क उत्पादक पैठारी कर्ता ढुवानी कर्ता सञ्चयकर्ता विक्रेता या त कानुन तोके या कथन या भाला व शर्त बन्देश परिपालन याना उद्योग व्यवसाय सञ्चालन यायता व याके त सूचित यागुदु निथङ्गु कानुन अख जुसा व सी दुसा कानुन कथन छक कारवाही जुइगु बेहोरा नापा स्वपु दुपी निकाय याता विभाग जानकारी याख गुख स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय स्वदेशी वास उत्पादन याता ढिसी लाखेगु आज नापा नेपाल औषधि लिमिटेडसँग वैगु निधन धुने सुई खुगु कथया मजी मगाको वास उत्पादन यागु ज्यान्य ज्याकगुदु थुकिया नीति मन्त्रालय व नेपाल औषधि लिमिटेड दथि थो समस्तारी पौ सम्प्रक्रिया निजाकागु मन्त्रालय धागुदु आ नेपाल औषधि लिमिटेडसँग झिन्छगु कथया
वास उत्पादन जुया सङ्गुदु वैगु इले उच्च रक्तचाप मधुमेह नपाया दीर्घ लुया वास नपा नेपाल औषधि लिमिटेडसँग उत्पादन यागु ज्या धल दु थुकिया नीति मागु अनुसन्धान विकास गुणस्तर परीक्षण उत्पादन अनुमति व प्राविधिक तयारी या त आपलान हेज्या कागु मन्त्रालय धापुदु मन्त्रालय थो ज्या झोया त प्रभावकारी कार्यान्वयन नीति मागु बजेट व्यवस्थापन यागु सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग मागु मजी मगागु वास आपूर्ति स्वदेशी उत्पादन या त थ्या बिगु नीति छेलागु व छेलेगु नीति ज्या नाचनागु धागुदु समझदारी छेला बुल्या वे धुङ्कानी सरकारी स्वास्थ्य संस्था नीति मागु वास न्यागु मन्त्रालय व वास लिमिटेड दति सहज नियमित व संस्थागत प्रणाली पाकेन जुगु व्यवस्था मिलेयाइगु जुगु दुसा थुकेसँग सरकारी खरिद प्रक्रिया अझ लिचो लाइगु कथ न्याइजाइगु व नेपाल औषधि लिमिटेडसँग उत्पादित वास सुनिश्चित छेला बुला बजार विस्तारे लिदंसा थेने गु फलसा कागुदु नेपाल टेलिभिजन या सेटेलाइट ब्यान्ड दछि न्यागु विशेषण दुवाले त निसङ्गु अध्ययन समिति सरकारी तथागु प्रतिवेदन ल लागुदु समिति मिगो सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा या त प्रतिवेदन ल लागु ख सेटेलाइट ब्यान्ड विथ न्यागु झोले नेपाल टेलिभिजन आ सार्वजनिक सेवा प्रसारण या त छ मटे नि छगु करोडिया दा सङ्कगु प्रतिवेदन नेथना त अगुदु विशेष अदालत नेकपा एमाले नोकु विष्णु पौडेल या त साधारण तारेकी तोते त औजाउ बिगुदु सम्पत्ति शुद्धिकरण या कसुरे विशेष अदालत या न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौडेल दिल्ली रत्न श्रेष्ठ व विदुर कोइरालाई जालसँग पूर्ण पूर्व अर्थमन्त्री तक जुयादीमा पौडेल या त साधारण तारेकी तोते त मिगथे उजाउ बिगु ख यलया जाउला खेले दुगु सदर चिडिया खाना मिग निसे सकल या त चाके चाका बिगुदु को गिद्ध हे या त बर्ड फ्लू खाने दे धुङ्का असार पाँच गते निसे चिडियाखाना बन्द यागु ख आ अनया व्यवस्थापन अन वैपी पहाँ पिन्त जनावर व झङ्ग पङ्क्षी नापा मा कथन तापक चोना श्वेत इनाप यागुदु देशन पिनिया जानकारी अमेरिका इरान याना चङ्गु खुनिया आक्रमण लाना च्याम्हा इरानी सिगु दुसा झाँका लाना निमा मनुत घापा जुगुदु थोए दथे इरान बराइन जोर्डन कुवेत व कतारे दुगु अमेरिकी अखडा आक्रमण यागुदु अमेरिकी आक्रमण या त सोया विश्लेषक फिन्स इरान या सहल या नीति बाध्य या त वा नुगु कथ या आक्रमण खदका धाता थाकुगु नेथङ्गुदु अफ्रिकी दे युगान्डा बनेको थियो छग अब छाका लाना निमा मस्त नापा नि छमा सिगुदु राजधानी कम्पाल या छगु बनेको थियो बस कोपचोवार जिल्ला शैक्षिक भ्रमण या झोले झाँका लागु ख चाहिला वेगु झोले ड्राइभर गाडी यात्रा नियन्त्रण काम फुगुली ले लिक दुगु लुहते लुहाना थो झाँका जुगु ख मौसमी जानकारी थौ दे नियङ्क सामान्य लिसे मजिक वा वैगु धागु दु हिमाली लागा चपुक वहाँ वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापु दुसा मिग स्वनिगले नि यागु फुटी च्यागु डिग्री सेल्सियस दति क्वाज लुगु खसा थौ नि यागु निसे नि हेगु डिग्री सेल्सियस दति क्वाज लुइगु धुकुमा दु सोनिगले थौ सुते याता इजुया झिन्नीगु मिनेटे लुगु सूर्य शनिलय नेता इजुया खुगु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार निनादिस शुभ

अहिले सुन्नुभयो नाटक जिन्दगी एक यात्रा, लेखक दीपक समीर, पात्रहरू लोकमणि सापकोटा, विष्णु शर्मा, सुरवीर पण्डित, सुनिता मालाकार थापा, अम्बिका प्रधान पन्त, गोपाल प्रसाद गेवाली, कुञ्जना घिमिरे, विमला केसी, भूपेन्द्र पराजुली र प्रदीप राज पाण्डे। रेकर्डिस्ट तथा ध्वनि सम्मिश्रण श्री राम राय माझी। निर्देशन जितेन्द्र महत अभिलाषी। संयोजन मदन।

0: की मुहिम में 100 साल का मुसलसल किरदार, टेली मवासिलात के फिरोग में आकाशवाणी लैंडलाइन CDMA होते हुए मोबाइल सहूलियात ने तारीख की जिम्मेदारी पूरी की है। टेलीकॉम के मवासिलाती सर्विस ने जदीद टेक्नोलॉजी मवासिलाती सर्विस हमारा वाहिद आजम हो। टेली मवासिलाती सर्विस मुल्की तामीर हमारा अहद हमारा अज़्म हो।
1: नेपाल टेलीकॉम मुल्क

लसो फ्याफुल्ला तिनी मजुसीसम्म 2862 तालो गोडेलाला छेपाब्ली विक्रमसम्म 2083 साल साउनलाला छेपाङी काम्रे शनिबार छु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेनमुला गा सूर्य मोक्तान राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तेन व्यवस्थापन प्राधिकरण से अझै नुन घेरे दोना हुल लामान डारे ग्रेन नामताईबारी खाम्बासे सतर्कता बारी सम्बन्धित निकाय थिएन बेरान हुलबादा मोहिजेनला बमला जल थिएन मौसम विज्ञान विभागला मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से तिनी थिएन नाङ्गार कोशी गण्डकी लुम्बिनी थिएन सुदूर्ण प्रदेशला पहाड थिएन तराईला तिलै गारी ग्रेन नामताईबारी खाम्सेला मुला बेसी पाङ बमला चुरानुनासी हुल्ला जोबो थिएन पहाड थुम कोशी बागमती लुम्बिनी सुदूर्ण थिएन तराईला लामान गारी मधेस बागमती थिएन गण्डकी प्रदेशला लामान ग्लागा धेरै ग्रेन नामताईबारी खाम्ला बेसी महाशाखा से पाङ बमला लामान ग्रेन नामताईबारी छ खबा भाल थिएन धुई खबरी खाम्बा ब्लुम्बरी खाम्बा गे ग्रान ब्युङ खबरी खाम्बा चाहिँ बेनादन सतर्कता बारी प्राधिकरण चाहिँ मोहिजेनला बहिन्न प्राधिकरण चाहिँ अनिना आतबा थिएन आलना आतबा गेरी बिमा स्यान गेरी दिव्याम फिर्का आथुनबारी थिएन जोखिम बुबा चुङ्गदेरी मुना सवारी साधन सेङमारी आपिनबारी सम्बन्धित निकाय द मोहिजेनला बमला विशेष लसी धनकुटा सिन्धुली ललितपुर काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट चितवन गोर्खा लमजुङ कास्की तनहु पर्वत बागलुङ म्याग्दी थिएन स्याङ्जा जोङ्री मुना सवारी साधन सेङमारी आपिनबारी थिएन विशेष सावधानता बारे विभाग से मोहिजेनला बमला प्राधिकरणला सुङ्गुन शान्ति महसै गोर्सोमन सुरक्षा निकाय स्थानीय तह थिएन स्वयंसेवकता विपतला दुरी रोडाबारी तयारी अवस्थारी टिबारी जोखिमोबा राजमार्ग थिएन सडक ग्याम्री डोजर एक्सा भेटर लोडर राङ्बा उपकरणका दे तयारी अवस्थारी थानबारी भाल थिएन दुई खापा बेमाङ्गा छन् सूचना पिन्छी जोखिमोबा ग्लाला मिदा सुरक्षित ग्लारी लेसी पिनबारी सरोकार थानबा निकाय द मोहिजेनला बमला प्राधिकरण चाहिँ गर्दै थिएन चुङकुरी रिटिबन खाबा हुल्बा थिएन धुइला जोखिमोबा ग्लारी टिबन खाबा गर्दा विशेष सतर्कता भरि थिएन विपद तासिन खासम रोला सिपिनमान खापा सम्बन्धित निकायलाई हटलाइन सेवा किनमारिन मोहिजेनला बमला कर्णाली थुम्ला सडक पूर्वधारला अवस्था गोबारी थिएन च्याबारी पूर्वधार विकास लोन सुनिल लम्साल कालीकोट रिधो बमला सडकला अवस्थालाई फेरि सडक डिभिजन गेदिम सुर्खेतला ग्रेन्डपोला च्याम्री कर्मचारी कार्य थिएन जानकारी किनबली छ ब्लोन लम्साल कर्णाली राजमार्गला दैलेख तबन कालीकोट रिधो बहिन्न ब्लोन लम्साल चाहिँ तिनी कालीकोट नगमा गमगढी सडक कोर्सी च्यासु बमला विसाम नाङ्गार खुलालु कोल्टी सिमकोट सडक तबन बाजुरा रिधोसी सडक अनुगमन लाभा थिएन च्याबा गेखोरमुला स्थलगत अनुगमन थिएन निरीक्षण लाभा थन्बा ब्लोन लम्साल से हुलबाला दुङ्गाल हुलबाला गारी निसिङ ज्ञानबा थिएन थेनुन अनुसार योजना सोसी सरकार से गेला बरे विषय कर्णाली रिदो बहिन्न छार नोर्दिङ तीबाला पायनुन ब्लोन लम्साल राजमार्ग थिएन सडक सञ्जालला अवस्था च्याबारी थिएन गोबरी स्थलगत रूपरिन थन्बा ताम्दा हुलबा से ज्याबा साङ्गुला रूपरी किन्बा मोला स्याहार थिएन क्लाङमा ब्लोन सस्मित पोखरेल से स्याहार चितवनला राप्ती नगरपालिका चुइसिङ हिरिमोबा श्री गणेश माध्यमिक लोपखाङला अनुगमनला शुभमला चेपाङ हुलबाला जाजा कोलाकादे ब्रिबडोबा लोपान खाबा थिए आवासीय लोपखाङला स्याहार अवस्था भौतिक पूर्वाधार थिएन ब्रिबडोबा लोप अवस्थालाई फेरि ब्लोन पोखरेल से जानकारी किन्छु बहिन्न ब्लोन पोखरेल से लोपखेन कर्मचारी थिएन लोपबनला अभिभावकका थिएन काठुई लासुमान लोपखाङला स्याहार गुणस्तर लोपबन गदे लोपखाङरी खाबा थिएन आखाबा चेपाङ जाजा कोलाकादे से ढाबन खाबा चुनौती थिएन लोपखाङ तोबा थिएन आतोबा ताम्रेन जानकारी केन्छे बम्बुबा अनुगमन लापलिचा ब्लोन पोखरेल से दुर्गम थिएन सीमान्तकृत हिलवाला जजकोला गदेदा गुणस्तरीय ब्रिबडोबा लोपसिपिनमा ताम्दा सरकार से ग्रेन प्राथमिकता रिथानमा मुला विषय सुङ्सु बम्बुला बागमती प्रदेश सरकार ग्याम नेकपा एमाले थोन्सेला तापमुला एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दल से सरकारी गोबाङलाबा ब्लोन गदेदा राजीनामा पिनबारी निर्देशन पेन्सिन बम्बुला एमाले संसदीय दल गोबन जगन्नाथ थपलिया चाहिँ ब्लोन गदेदा दानग्याम राजीनामा पिन्छ सरकार ग्याम थनबारी निर्देशन दोन्छु बहिन्न गोबन थपलिया चाहिँ राङ दान्दे याम्बुरी मुबासे ब्लोन गदेदा राजीनामा पिनबारी निर्देशन पिन्छ जिम्मा विषय सुङ्छु बम्बुला स्यान प्रदेश श्री राङमान सत्तारी मुबा दल नेपाली काङ्ग्रेस तिनी एमालेलाई गठबन्धनले विवाद तबली छ सरकार ग्याम फिर्का थोनमा निर्णय एमाले सेला बहिन्न गोबन थपलिया चाहिँ ब्लोन गदेदा दुई डिग्नाला सिंह ग्रेनबर्ड इन्द्रबहादुर बानियादा राजीनामा पिनबारी निर्देशन पिन्छ जिनमामुला विषय सुङ्क्षेप मुला बागमती प्रदेश सरकारी एमालेला मेन्दोसोम बिना विभागीय थिएन मेन्दोसोम ब्लोन गदेला चाहिँ मेन्दो ढु ब्लोन गदे मुला
विशेष ठिमखाङ सय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रोचो होथेन गाछला रो काइब्लोन विष्णु पौडेल दा साधारण तारेक रि खलाबारी आदेश पिनबमला सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरी विशेष ठिमखाङ ठिम्पोन्छेन बोकादे नारायण प्रसाद पौडेल दिल्ली रत्न श्रेष्ठ थेन विदुर कोइराला इजालास रोचो हो पौडेल दा साधारण तारेक रि खलाबारी आदेश पिनब हिन्ना ठिमखाङ सय रोचो हो पौडेल दा लाबा आरोप र फेरि बयान पिनबले प्रमाण आछ्योबा दीपक भट्ट थेन टाङ्गा किनमा पिनमा आलाबा सम्पत्ति छापा थिएन खाजी बहिन खाल्ला फाइदा किनमा के आलाबा म्याङमा मुला बेसी पाङबा मुला यातायात थुङखेन गेदल छाता सङ्गठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ से दुर्घटना राहत कोष त कोङमा सोबारी पेट्रोलियम छिगु लिटर घिक्री सिका घिक थिएन बिजुली ग्याम चार्ज लामा युनिट घिक्री सिका घिक टाङ्गा काप्से पिनमारी सुझाव पिनपा मोला पूर्वाधार विकास ब्लुन सुनिल लम्साल थिएन टिम न्याय थिएन संसदीय मामिला ब्लुन सुविता गौतम दा लोलो लोलो ज्ञापन पत्र बुझब्लाबन महासङ्घ से संशोधन ल प्रक्रिया रिमोबा सवारी ठिमरी सवारी दुर्घटनालाई पीडितता पायानन उद्धार लाबारी मानलाबारी थिएन क्षतिपूर्ति पिनबारी सभा दुर्घटना राहत कोस्ता कोङमा सबारी टाङ्गा काप्सी धुइबारी सुझाव पिनबा हिन्ना ङाचाला काइब्लोन थिएन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाला थुतबोन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सय ङाचाला नोरब्लोन डाक्टर दिपेन्द्र राज पाण्डे डोङबारी दुङ्गार प्रसाल बमुला चुरानुला सय नेपाली काङ्ग्रेसला चोहो गगन कुमार थापा सेनुन ङाचाला नोरचोहो डाक्टर दिपेन्द्र राज पाण्डे डोङमा सय दुङ्गाल प्रसाद बन दिम्थेमेदा नुप्प समवेदना फुल्छ बमुला डाक्टर पाण्डे तिलमाङ्या से याम्बुला विशाल नगरी बोबा याङलान दिम्री ब्रेच्यु से निस दिङरी डोङमुला ओसेम डडेलधुराला अमरगढी नगरपालिका गिस खसरे खाँड्री जीव दुर्घटना तमाम मेन्दो निमी शिवमुला धनगढी घ्याम दार्चुलारी निबल लाभा बलेरो जीव तिनी छोरी दुर्घटना तमा मेन्दो निमी शिवमुला विषय जोङ प्रहरी गेदिम डडेलधुराला ग्रेनपो वरुण बहादुर सिंह से सुङबा हिन्ना दुर्घटना तमा दार्चुला जुङला अपि हिमाल गाउँपालिका गिक्ला घिचुसे घाँ दिङला शुभम लोथ्याल थेन थेनन ग्लाला घिचुइ दिङला हुम लोथ्याल शिवमुला चुरानुलासी झापाला गौरीगञ्ज गाउँपालिका घिरी बुबा हुलाकी राजमार्ग गरी कार थिएन मोटरसाइकल ठोकमा मेन्दो घिमी शिवमुला गौरीगञ्ज घिरी बुबा हुलाकी राजमार्ग गरी विराटनगर ग्याम तुलाचन चोक्री नेपाल लाभा कार थिएन मोटरसाइकल ठोकमा घाइते थापा सोम्ची दिङला मोहम्मद नुर इस्लाम थिएन सोम्ची सेङ्घा दिङला एनबी मोजुबुल शिव हिन्ना चुनन साङ्गुरका देला छ्याम्री तिनी त तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान बन्ला सिगो लसो फ्याफुल्ला

ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमा समाचार सुनल जाए। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग गैर कानूनी ढंग सँ फुटवेयर जुत्ता चप्पल के व्यापार व्यवसाय नहि करबाक लेल सरकार भेल सब सँ अनुरोध कयलक अछि। विभाग शुक्र दिन सार्वजनिक सूचना जारी कऽ गैर कानूनी रूप में फुटवेयर के व्यापार व्यवसाय नहि करबाक विषय में सूचना जारी करैत सरकार भेल सब सँ समन्वय आ सहयोगक लेल आह्वान कयलक अछि। विभाग बाजार में लेबल नहि भेल आ नकली तथा कम गुणस्तर भेल चोरी पैठारी कयल फुटवेयर जुत्ता चप्पल सहित उत्पादन के भौतिक तथा डिजिटल माध्यम सँ बिक्री वितरण भऽ रहल कहि विभिन्न माध्यम सँ उजूरी तथा शिकायत प्राप्त भेल संबंध में गंभीर ध्यानाकर्षण भेल जनौलक अछि। विभाग उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 के दफा 6 में उत्पादक स्वयं उत्पादन कयल वस्तु में ऐन द्वारा तोकल गेल अनुसारक लेबल लगाओल जेबाक जनौलक अछि। विभाग ओही ऐन के दफा 8 में भेल व्यवस्था अनुसार पैठारीकर्ता वस्तु पैठारी करैत काल कानून अनुसार के शर्त पूरा करबाक लेल सेहो अनुरोध कयलक अछि। विभाग ओही ऐन के दफा 11 में वस्तु बिक्री करयवला विक्रेताक दायित्व सहित कानूनी प्रावधान अनुसार उपभोक्ता गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त करयवला आ करबाक अधिकार के सुनिश्चित कयल जनौलक अछि। विभाग सब उत्पादक पैठारीकर्ता ढुवानीकर्ता संचयकर्ता आ विक्रेता सबके कानून द्वारा तोकल गेल अनुसारक दायित्व तथा शर्त परिपालनक उद्योग व्यवसाय संचालन करबाक लेल आ करबाक लेल ई सूचित कयलक अछि। विभाग कानून विपरीतक कार्य कयल गेल पाओल गेला पर कानून अनुसार कड़ा सँ कड़ा कार्यवाही कयल जेबाक ब्यौरा सबके जानकारी करौलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार साउन 15 गते सँ मंत्रालयक संख्या घटाकर 9 में सीमित करयवला भेल अछि। सत्ता साझेदार दल बीच भेल सहमति अनुसार मंत्रालय पुनः संरचना करबाक तैयारीक संगे मंत्री सभक जिम्मेवारी सेहो हेरफेर होबयवला भेल अछि। गठबंधन दल बीच भेल सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले 3-3 तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2 मंत्रालय पाओत। मुख्यमंत्री सहित प्रदेश सरकार में अब कुल 9 मंत्रालय रहत। हाल 3 दलक भाग में 4-4 मंत्रालय रहत। मुख्यमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक मध्य प्रदेश सभापति कृष्ण प्रसाद यादव मंत्रालय संख्या घटेबाक विषय में सत्ता साझेदार दल बीच निरंतर छलफल भ रहल बतौलनि। मंत्रालयक संख्या घटलाक बाद मंत्री सभमे हेरफेर होयब स्वाभाविक भेलाक बावजूदो एहि संबंधी निर्णय पार्टी भीतर के छलफल पश्चात मात्र होयबाक ओ बतौलनि। ओ कांग्रेसक सभ मंत्री परिवर्तन होयबाक चर्चा निराधार रहल स्पष्ट करैत आवश्यकता अनुसार मात्र निर्णय कयल जेबाक बात बतौलनि। मंत्रालय संख्या घटला पर नेकपा एमाले सेहो अपन भाग सँ एक गोटे मंत्री के फिरता बजेबाक तैयारी कयलक अछि। एमाले संसदीय दलक नेता

सरोज कुमार यादव मंत्रालय घटलाक बाद एगोटे मंत्री हटेबाक अनिवार्य भेल चर्चाकृत कार्य संपादन के मुख्य आधार बनेबाक जानकारी देलनि। काठमांडू महानगरपालिका चालू आर्थिक वर्षक लेल करदाता के छूट जरिमाना मिनहा सहित सुविधाक व्यवस्था कलक अछि। एहि सौने गते सँ लागू भेल आर्थिक वर्ष 2083-84 लेल छूट तथा जरिमाना मिनहा देल गेल अछि। संपत्ति कर, व्यवसाय कर आ बहाल कर अगला आसिन मासांत भीतर दाखिल कैला पर कुल कर रकम में 10% छूट प्राप्त होयत। एहि तरहें विगत के वर्ष सब सँ कर तिरब बाकी रहल करदाताक लेल महानगर राहत के घोषणा सेहो कलक अछि। एहन करदाता 2083 साल आसिन मासांत भीतर सब बक्यौता रकम एकमुष्ट चुकता कैला पर विगत के वर्ष में लागल संपूर्ण जरिमाना मिनहा हेबाक व्यवस्था आइन कलक अछि। छोट उद्यमी तथा लक्षित वर्ग के प्रोत्साहन करबाक लेल विशेष व्यवस्था कैल गेल महानगर कार्यालय जनौलक अछि। 5 लाख धरि पूंजी भेल आ महिला, जनजाति, दलित, अपांगता भेल व्यक्ति व 35 वर्ष सँ नीचा के युवा के नाम में दर्ता भेल व्यवसाय आसिन मसान भीतर कर बुझेला पर 40% छूट पाओत। काठमांडू महानगर के स्थायी बासिंदा भेला पर एहन छूट 50% पाओत। कमती में 20 गोटे के रोजगारी देबाक लेल नया उद्योग के 3 वर्ष धरि व्यवसाय कर में 95% छूट देबाक आइन में व्यवस्था अछि। होटल तथा रिसोर्ट के संपत्ति कर में थप 10% छूट होयत। व्यावसायिक रूप में पार्किंग प्रायोजन के लेल मात्र निर्माण कैल गेल भवन के निर्माण सम्पन्न भेल तिथि से 10 वर्ष धरि संपत्ति कर पूर्ण छूट देल जेबाक व्यवस्था रहल अछि। संगे घर कंपाउंड में सेहो पुनर्भरण प्रविधि जरान करबाक, आवासीय भवन के संपत्ति कर में 95% धरि छूट के व्यवस्था कैल गेल अछि। आइन व्यावसायिक भवन आ कार्यालय के लेल प्राप्त बहाल रकम में 10% कर निर्धारण कलक अछि। आवासीय प्रयोजन के लेल हक में वार्षिक 2,40,000 टका धरि में आय प्राप्त करयवला करदाता 5% आ ओहिसँ अधिक आय होबयवला 7% बहाल कर बुझाबय पड़त। व्यवसायक परिचय के लेल 15 वर्ग फीट धरिक एकटा बोर्ड के निःशुल्क कयल गेल अछि। स्थानीय भाषा आ रंजना लिपि के प्रयोग के प्रोत्साहन करबाक लेल एहि लिपि में निर्माण कयल गेल परिचय पाटी में 95% छूट देबाक नीति लेल गेल अछि। आर्थिक भार कम करबाक लेल चालू वर्षक कर अधिकतम 3 किस्ता में बुझाओल जा सकबाक सुविधा देल गेल महानगर जनौलक अछि। एहिमे कुल रकम के 40% पहिल किस्ता में, दोसर आ तेसर किस्ता में 30-30% रकम बुझा सकैत अछि। 1 करोड़ सँ अधिक बकौता भेल करदाता निर्णय करा कऽ बहुवर्षीय किस्ताबंदी के सुविधा लऽ सकैत अछि। एहि तरहें करक परिधि मे नहि अयबाक आ बेर बेर के सूचना के नहि टेरयवला करदाता के हक में करा नीति के व्यवस्था कयल गेल अछि। कर नीति निहारक व्यवसाय के स्थल सीलबंदी करबाक, बैंक खाता रोका करबाक, सरकारी बाकी सारा असूल ऊपर हेबाक आइन में प्रावधान राखल गेल अछि। विभिन्न मुद्दा में अदालत से कै तथा जरिमानक सजा सुनौलाक बाद फरार रहल प्रतिवादी के पकड़वा में आ पकड़ाव करबा में अभियान अंतर्गत धनसा प्रहरी पिछला 1 सप्ताह में 125 गोटे के पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय जिला अदालत के फैसला कानून के प्रभावकारी बनेबाक लेल विशेष अभियान संचालन कयल जनौलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालयक प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यूपाने के अनुसार गत आखार 25 गते सँ सौन 1 गते धरिक अवधि में कै तथा जरिमानक सजा तुकल गेलाक बाद फरार रहल 125 गोटे प्रतिवादी पकड़ल गेल अछि। हुनका अनुसार अखार 25 गते 10, अखार 26 गते 26, अखार 28 गते 22, अखार 29 गते 28, अखार 30 गते 14, अखार 31 गते 14 आ सौन 1 गते 11 गोटे फरार प्रतिवादी पकड़ल गेल। पकड़ल गेल सब प्रतिवादी के आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा कर फैसला कार्यान्वयन के लिए जिला अदालत में पेश कैल गेल प्रवक्ता न्यूपा ने जानकारी दिलन। धनसा प्रहरी अदालत के फैसला प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन करबाक लेल फरार प्रतिवादी के खोजी तथा पकड़ल अभियान के अगला दिन में सेहो निरंतरता देबाक जनाओल गेल अछि। नेपालगंज भन्सार कार्यालय गत आर्थिक वर्ष 2082-83 में 20,11,55,00,000 टका राजस्व संकलन कलक अछि। भन्सार कार्यालयक प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन पौड़ेल के अनुसार ई राजस्व असूली अगला आर्थिक वर्षक तुलना में गत आर्थिक वर्ष 16,45,00,000 टका कम राजस्व संकलन भेल। ओ कहलनि जे पेट्रोलियम पदार्थक आयात में आयल कमी, भारत सँ चीनी निकासी में लगाओल प्रतिबंध सहितक कारणे राजस्व में कमी आयल अछि। कार्यालय के अनुसार आर्थिक वर्ष 2081-82 में 20,28,51,81,000 टका राजस्व संकलन भेला पर आर्थिक वर्ष 2080-81 में 18,15,72,33,000 राजस्व
टका सङ्कलन भेल छल। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयसँ इन्धन, ट्र्याक्टर तथा ट्रिलर, पोलिथिन दाना, चाउर, खाद्यान्न, लोहा सहितक वस्तुक आयात अधिक होइत गेल अछि। सँगै जड़ीबुटी सहितक वस्तु तथा सामान निकासी होइत गेल अछि। अविरल वर्षा के कारण देशक विभिन्न भाग में बाढ़ आ भूस्खलन सँ मुख्यतः राजमार्ग सब अवरुद्ध भेल अछि। नेपाल प्रहरी के अनुसार खुड़कोट नेपाल थोक, कटुंजेबेसी, कांती लोकपथ, मेची राजमार्ग, सालझंडी ढोरपाटन, अर्निको राजमार्ग अंतर्गत भोटेकुसी गांवपालिका वार्ड नंबर 4-0 किलो में भूस्खलन खसला पर ई खंड अवरुद्ध बनल अछि। एहि तरह बागलुंगक जैमिनी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 बेलबगर में भूस्खलन भेला पर कालीगंड की करीडोर पूर्ण रूप में अवरुद्ध भेल अछि। एहि बीच जल तथा मौसम विज्ञान विभाग देशक विभिन्न भाग में आई आ काल्हि मूसलाधार वर्षा हेबाक जनबैत संबंधित सब सँ विशेष सतर्कता अपनेबाक लेल आग्रह कयलक अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आई देशक विभिन्न स्थान में भारी से अति भारी वर्षाक संभावना रहलाक कारणे आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल आग्रह कयलक अछि। विभागक मौसमविद संजीव अधिकारी के अनुसार हाल देशभर में मानसूनी वायुक प्रभाव रहल अछि। मानसूनक न्यून चापी रेखा पश्चिम दिस सरदर स्थान से किछु ऊपर नेपालक तराई आसपास तथा पूर्व दिस सरदर स्थान के आसपास रहलाक कारणे अगला 3 दिन धरि उल्लेखीय वर्षाक संभावना रहल अछि। आई कोसी, बागमती, गंडकी, लुमनी प्रदेशक पहाड़ी तथा तराई भूभागक किछु स्थान में भारी वर्षा तथा एक दू स्थान में बहुत भारी वर्षा हेबाक संभावना रहल विभाग जनौलक अछि। कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक 1-2 स्थान में भारी वर्षा भ सकबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि। विभागक अनुसार संभावित वर्षाक कारण ग्रेगान बहाव, बाढ़, भूस्खलन तथा भूक्षय के जोखिम बढ़ि सकबाक कारणे प्रभावित क्षेत्रक बासिंदा विशेष सावधानी अपनाबय पड़त। एहिसँ दैनिक जीवन यापन, जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सड़क तथा हवाई यातायात में असर पड़ि सकबाक कारणे विभागक पछिला मौसम संबंधी सूचना नियमित रूप में आग्रह अइके लेबाक लेल आग्रह कयल जनाओल गेल अछि। आई दिनक देशभरि सामान्यसँ पूर्ण बदली रहत। आई राति सेहो देशभरि अधिकांश स्थान में बदली रहि पहाड़ी तथा तराई भूभागक अधिकांश स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित वर्षा हेबाक संभावना अछि। कोसी, बागमती, गंडकी, लुमनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक पहाड़ी तथा तराईक 1-2 स्थान में बहुत भारी सँ अति भारी वर्षा भऽ सकबाक कारणे उच्च सतर्कता अपनेबाक लेल विभाग अनुरोध कयलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक पहिल निजी क्षेत्र द्वारा निर्माण कयल ऑर्बिटल रॉकेट आई अपन पहिल उड़ान सफलतापूर्वक सम्पन्न कयलक अछि। ई विश्वव्यापी अंतरिक्ष अर्थतंत्र में भारी हिस्सा हासिल कऽ सकबाक खोज रहल भारतक लेल भारी उपलब्धि भेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनने छलहुँ, मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज और कल अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना। अत्यावश्यक कार्य के अलावा रात के समय यात्रा न कर

कम ही न तरंबा विशंति मुंडकोपनिषद 1:2:10। अर्थात यदि कोई स्वर्ग जाने बारे में विचार गर्छ भने ध्यान दिनुस् प्राप्ति होइन, जानलाई मात्र पनि सोच्छ भने त्यो प्रमूढा हो, त्यो मूर्ख होइन, महामूर्ख हो, महामूर्ख। वेद भन्छ, वेद के हो? साक्षात भगवान। यो बताउँदैछ वेद।